0: हर्ष और अमन दोनों दोस्त हैं।
1: मैंने उसका दिल जीतने की शर्त लगाई थी, दिल तोड़ने की नहीं। तूने मेरे जिगरी दोस्त की बेइज्जती की।
2: जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसका वो होता है।
3: ये तो मेरी जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसके साथ जीने की आदत सी पड़ गई मुझे।
4: लाखों का महबूब शायर होने के बावजूद आप उनसे अजनबी क्यों हैं?
3: मैं उनके लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता हूं, लेकिन उन्हें दुख नहीं दे सकता।
5: बहुत प्यार
1: तू पहाड़ टूटने की बात कर रहा है, मैं तो उसे गले लगाने की सोच रहा हूँ।
6: अगर आपने सागर के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा।
7: सर जी को कोई तकलीफ होगा तो कुशल हम कर देगा जी। हमारा नाम लक्ष्मी गुंडप्पा चिनप्पा करियप्पा लिंग स्वामी।
3: तुमने क्या समझ रखा है मुझे? तुम जैसी सोसाइटी गर्ल्स के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। आज मुझे पता चला है भगवान कि मैं वाकई अधूरा आदमी हूँ, और इस अधूरे आदमी को बनाने वाला कौन है? तुम हो।
1: तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने मजबूर और लाचार हो। मर्द औरत की हिफाजत करता है, अरे जब तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते इस लड़की क्या करते?
3: मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया है भगवान, मुझे माफ कर दो।
1: जिसे हमने ढूंढा गली गली वो मेरे घर के पिछवाड़े मिली।